उदयन तो बिडावे तिसनी ने ना हेने ने ना ने ना अरे रे समने ने ना अरे क्वति वाले बाबी गलेन अरव एम बलिव निम्सियो दे ना याबो रशद दाइक तवासा होन याबो तो न तो दाइत यह दबेन दी आया तो न तो शुभुत याबो गलेन अरव है शस आहोना हेनेन उद्धयोन दाइना इतने सरीव दाई था तिब दाइने तरेनी दाई था आतिब दी मरहनी तरेनी शल दाई था तिब दाते ना दाई था आती दी म एम बलिब निम्सियो दी एम बलिब दीतित अरे मिड्डा अफरहा गलेन अरव रे समनई हेनेन अमसे हो आदि दाने आदे तून इन इन सिरे का तित्ते न ते दाई अल्फाद ले यदने ते दाई कक रिस नई कक तवास नई उम्बतियो इन बलिव दिया ने

धन तो बिड़ावी अरे ए ना ओकना तू न तुवे दुरनी ने ना तिब बथ्यो एम बल इवदी अनेत आओ उनू धई ईद आबदायनो इन निसरिक तवामेनो तवायनो इन सिरिक एकन अरे कतीने अरे कतीने इम बरे रशद बरा रशद आको रशद एकन दाए ब्रंशीदो दाई थाती इतरशिदना अमाग रशीदो अमाग थाती इतरशिदना तू न तो दाई थिनिन निसरी ओकना बे तुनाती दाई इन निसरिक तेन ते दाई सोयाना तेन ते दाई रहसा नदी ओकन नेत आओ ऊतक का गिंदिया थबैती तो दूर अरे हुआ ओरिया हुआ वह बिन तेरा बंदे इंदी तो दूर अरे तवास्ते नी आते सो कीना वह बिन रिस्ते नी आया इन बरे कस्से दायब ते सो कीना तो दूर अरे बीबरी एक तोले हाफी बिथायक ओरिया बी कोना एक इंदोर ऊ सिमाय कुड़ीनी तोले रिस्ते नी आया ना अरे ले तवाया ना फगर फगर आप अकेना दाई था आती दाया ना इदाई ओ धई वविन कायक ना हमोइसाना इदादिस कायक ना रिशिदना उत्थाय आती यर सोतनियो ओ सो उदाई उन ऊस उम्बरु उगनी इब्दायती लेत लेत बितकाय देविन्नो हैया केतित है सकेन बेतुनाती दा हेनिन दाई ने यर निसरिव यार अरेना अरित अरितेना बराक नहन धयो नानो अको बेतुनाती दा दाई ने निसरिव ओकना दाई ने तवायाना यरेक तेन ती दाई ओसदिक कतियक सोयाना हमोइसा कतियक सोयाना थदारित कतियक सोयाना ओसदिक कतियक सोयाना अरे क्यार एकन बा मागन गले करवे ददीना गले करव इप्तिकेकन ओरे रुआ तित्तेन बते तिदाई इप्तिकेकन तवायाना दीतित सोतनी आया तो और तिकतियक उसानो खमोईसी तिंदी आया और कतियक तुकातोक दाए बगनो खोई दिया तिंदी आया उम्बतु कस्तु यार ही दद्दे तवाई ही दायत इम्बते कस्ते सकेनेक रख न लही तेरा शिद नौकना असे है सकेनो तो बुढ़ावी उधायून इन्हें इन दाई न निसरी वोकना तू न तो दाई दी म दाई ते कतियो बे नोदोर तिशबोबी तुशाबु बुआ आ थदरे हुआ आन फगरंदी हुआ ओरिया हुआ तित्ताने इम्बता यारे तवाई इन यार उबोई सकेनो लही लही बितकाई यार गरोयो

धयुन तुबिडावे तिसनीने ना हेने नेना नेना अरे रे समने नेना अरे क्वती वाले बाबी गलेन अरव एम बलिब निम सियो देना याबो इरशद इदाई तवासा होन याबो तोन तो दाई यह दबेन दियाया तोन तोशबुत याबो गलेन अरव हैश अस आहोना हेनेन उत धयोन दाईना इतने सरीव दाई था तिब दाईने तरेनी दाई था आतिब दी मरहनीय तरेनी चल दाई था तिब दाते ना दाई था आती दी में एम बलिब निम सियो दी एम बलिब दी तित अरे मिड्डा अफरहा गलेन अरव रे सम नहीं हेनेन अम से हो आदि दाने आदे तून इन इन सिरे का तित्ते न ते दाई अल्फाद ले इतने ते दाई कक रिस नहीं कक तवास नहीं उम्बतियो एम बलिब दिया नहीं

धन तो बिड़ावे अरे ए ना ओकना तो न तुवे दुरनी ने ना तिम बथ्यो एम बलिव दी अनियत आओ उनु धई ही दाबदाए नो इन निसरे का तवामे नो तवाए नो इन निसरे का एक न अरे कतीने अरे ते कतीने इम बरे रशद बरा रशद आको रशद एक न दाए ब्रंशी दो दाई था आती इतरशिद ना अमा ग्रशी दो अमा था आती इतरशिद ना तो न तो दाई थिन निसरी ओकना बेत तो ना ती दाई इन निसरे का ते न ते दाई सोया ना ते न ते दाई रहसा न दिया ओकन नेत आओ ऊतक का गिंदिया इत्था बैती तो दूर अरे हुआ ओरिया हुआ वह बिन तेरा बंदे इंदी तो दूर अरे तवास्ते नी आती सो की ना वह बिन रिस्ते नी आया इन बरे कस्से दाए ती सो की ना तो दूर अरे भी बरी एक तोली हाफी बिथायक ओरिया भी कोनायक इंदोर ऊ सिमाए कुड़ी नी तो ओले रिस्ते नी आया ना अरे ले तवाया ना फगर फगर आप अके ना दाई था आती दाया ना ए दाई ओ धई युवन कायक न हमोय साना इदादिस कायक न रिशिद न उत्थाय आती यर सोतनियो ओ सो दाई उन ऊ सुंबरू उगनी इबदायती लेत लेत बितकाय देविनो हैया केतित है सकेन बेतु नाती दा हेनिन दाई न यर निसरिव यार अरेना अरित अरितेना बराक नहन धयो नानो अको बेतु नाती दा दाई न निसरिव ओकना दाई न तवाया ना यारेक तेन अति दाई ओसदिक कतियक सोयाना हमोयसा कतियक सोयाना थदारित कतियक सोयाना ओसदिक कतियक सोयाना अरे यार एकना बा मागना गले करवे ददीना गले करव इप्तिकेकना ओरे रुआ तित्तेन एंबते तिदाई इप्तिकेकना तवायाना दीतित सोतनी आया तो और तिकतियक उसानो खमोयसी तिंदी आया और कतियक तुकातोक दाए बगुनो खोई दिया तिंदी आया उम्बतु कस्तु यार ही दद्दे तवाईत ही द दायत इम्बते कस्ते सकेनेक यारक न लेते रशिद नौकना असे है सकेनो तो बुढ़ावी उधायून इन इन इन दाई न निसरी वोकना तू न तो दायत दीम दायत ते कत्यो बेन ओदोर तिशबोबी तुशाबू बुआ आ थदरे हुआ आन फगरंदी हुआ ओरिया हुआ तित्तान इम्बता यारे तवाईत इन यार उबोई सकेनो लहित लहित बितकायत यार गरोयो इराशिद ना बरयोक न दाय नात दायन वरी ने दा नात दायन बेत तु नाती दाय इन इन इन असासक धैयो नेहरिव असासक उने हरुए उन उधै असासक दाय दाय थाय आती दाय ने तो न नेहरिव इन यारान व इन सिरकायान इन बरा रशदोनु रशद दाय तवानेक शुबोबी ऊतक सूर्य दबाब कक दियाव फेराई दो बनु इक्तिहन रे उबारशा तवामीन मल है तरमो मनु इकती हन ना तवा का नहत आये दिया मल है उत मल है सो किन्ना तरमो मा हुआ मल ही हुआ इन दरे सो किन्ना रशा दुकना गार रे वंग के आक इन सरिका हुआ यार आकना रशा दु बेत तो ना ती दा हिनें इन आरान दाए दाई ने थरे नी दाई थाय आती दाए ने बका लहित लहित बित काय हिनें है ने मार दित हमसे बारुक उकना उक तिकते ना आन इन निसरिका दिशबोबी नहीं भवाते कतेक भव बहवीना भव ओकन हवासा तेदने यारे बर हर दीते हवा हवा न दीना थव उदाई भवासाना भव बहवीना अरे ओकन बागुस्सा ना भव ओकन तो नंब तो दाए बे तिशबूब तेदने निजाम दई तीन हमसे ना निजाम तिंदियक और मरदोर फितेर आया मरदोर महस आया मरदोर देरा रा तिंदी आया तुम अरे तोकन तुदाई रिसेतित का तोन आया तुम बतो तोन अमसे आया दीतित तोकना अमसे तिनीवे तुम्हारे लही तुए तिनी वाया तू ना ना ना तो तिंदिये ओकना तुबनिया तुबारी तू उन उबाशर हुआ अदे हुआ दाई अक्ते अकें कावत वे तो ना तिदा इत्था या तिदाई हिनें निसरी ओकना उन दाब इन हिनें गाना उन्ने तो तुबड़ावे ती उगनो ही पीदी ने ते ना ना तो तिंदिये ओन उन्हें सिरिक अना और बर्रा भवाया हल्लान हल्लान का एन बक दिफा और दिफा दी तित का बर्राब का सुके फरा दी मा सुके कित फेरा ओ दोर हवा अरवाब कतिये हवा स्तिनिया वो हवा अरे अरवाब भी काये दोर दिवा तिंदी आया जमन एनो राहाते कहा तिंदी आया अरे अना और दिफात मल्ला मर दोर आ तिंदी आया वो हवा ओकना यार इदाय हुआ दाय हवा हुआ उम्बरोर हस्तिनिया हवा स्तिनिया आया सूर उन धायून दमन बेन आई
maashallaay mandaraa hinawo un wawli ihiin obeen odor daayi taay aatiib ihiin daahase hinin dahoynihay udamaan usuure bakaayad irib udahay mindar eyaanay tumadiina eyaano taya tusuure dhakaad terib bettunaatiida nazamteene toona zamanekinawa wahawaawa teerawa imbare nizaam dayted ine toona umbatu arriwookna tadriise katiyek allamteni aya teena tidaayid tisookiin aya teena tidaayid resteni aya henin kastuutuni sariweetukna daayi badaayin daayi tayaatib badaayin niyaadib imbalib niyadookna bettunaatiida shiboobna yariyookna day shiboobna yareeg ikna nakumanaayaana nisirig uukna unakumana henin nisariwi naagwadiibu tirneeg nisirig uukna un uudhay orey fira sigiya baksaka eedn oor uukna hirere inu bak oguruma shiishtiniyayd ana ooru umbaruk daaywaatindiya idaayiftindiyaaya are uknaayuuk inakumanaaya kasiistiniyaaya naanaatutindiyeg malla udhayida nakumanaayine kaabu udhayida ishiboobe kaabu udhayida masiguwa daayinawa tawaayine kaabu henin bettunaatiida in yar imbaliptudayneyade yaranba ishibubna ba iirshidnahuun lahit ba itfeyiknahuun daayi taatibba daayin uudhaareerheeno maashallah uor naa abunaanaay orkeeke maashallah daay oru daayi tarbiyaay rabbiyaaba daayi soysooyaaba ba iyaadnamiyaadib henin imbalibneyadukna bettunaatiida shiboobna ugaroyokna day shiboobna yareyokna day shiboobna udhayida shiboobna ushawiida shiboobna imbate kaste henin nisariweetukna naato ako uttunaatiida udhayun tubida